0: ब्राह्मण ला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोवर्धन नाराज पोती का ते जमाली तन में सखाई मंत्र पूरा पढ़ते बस समुद्र का पाई छोटी ले पखंडा
1: मांस खाने करे निवास छिरी बनाए

साहेब नाना हार गए ते बेहा पासा खाली किचला ही उपर खाली जे जिना गुरमुख नाम ते आया ते फिर बिघन ना हुई राम राजे जिन सतगुरु पुरख मनाया।

पार कर रहे सन, एक अबला स्त्री उन्हां दे मगर मगर वेख्या। नौजवान छाला मारदे होए नदी पार कर रहे ने, ओ अबला स्त्री भी ओनू भी हौसला आया है ते पावे ओ निर्बल सी, पर वेख्या इतने सारे नौजवान लंघ गए ने ते मैं नहीं लंघ सकदी। ओने भी छाल मार के ते नदी जदों मारी छाल ते ओ भी पार पै गई। बाबा जी कहंदे ने महापुरुष नाम जपन वाले संत मानो नौजवान ने इस दुनिया विचों जित के जांदे ने, पर तू अपने आप नू निर्बल समझ दे, पर ओना नू वेख ओ पार पै गए ते तू किवें ना पार पएगा। एक वारी तू नाम जप संतां दी तरह तू भी मार दे छाल, उस गोरी दी तरह तेरे मन विच भी धीरज आवेगा। बाबा जी कहंदे ने जे नहीं जपेगा मेरा तू सोना ही इकट्ठा करना है ते फिर अगे आरा तैयार है तेरे लिए जिदे नाल तेरे दो फाड़ कीते जाणगे। कहंदे ने

ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੀ ਵੀ ਐਨਕ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ
लेकिन सारा जलंधर टूट गया है, जा रहे हैं जल्दी ठीक नहीं थी बस एक सफर कर रहे हैं। गर्मी के दिन भी सर सर्दी और खास गर्मी में एक यंग मैन नौजवान लड़का मेरी सीट में डाल देखा है, देखे बड़ा सुंदर नौजवान है। मैं पूछा काका तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है पर तेरी अखा खराब हो गई है, हंसता जो मैंने खिलाई देता है। आज से कह लगा भाई जी अखा खराब नहीं होगी। मैं क्या तेरा ने क्यों लाई है, कह लगा न्यू लाइट ही है ना क्या खुश रही। मैं क्या भावे अखा की लाइट मुक जाए पर न्यू लाइट का जरूर जारी नहीं है इनकी कहने पर सारी अखा डॉक्टर को लगती। बाबा जी कहते सारी से तरह तंदुर मानस के व्यापार भी एनका लगदिया हैं। इस मालक ने व्यापार भी एनक रख दिया है, कोई पुत्र भी एनक लगाने वास्ते आ जाता, कोई माया भी है सरदा जी माया चाहिए मिल जाती, कोई बड़ी चीज नहीं। इतना पता चलता है फिर में चीज चीज को राज पार ब्रह्म गरीब कोई मान मटियाई भी एनक लगाने वास्ते आ जाता, कोई मकान भी एनक लगाने वास्ते आ जाता है। पर बाबा जी कहते सन कोई गुरु नानक में दर्शन करने वास्ते हैं जो हम पर बाबा जी महाराज कहते सन लोग दुनियावी एनका लगाने वास्ते सारी दुनिया आती है पर सन गुरु नानक में दर्शन करने वाली है भी कोई निर्भर कोई हिरला के रास्ते पाओ तेरा।

दर्शन की भूख कर दर्शन की भूख मैं धर्म को नीता नीत कभी तय आज खुशी हो जाएगी, कभी माता से खैर बह जाएगी। दर्शन की अजराय उदास रोता चलता है, मेरे धन गुरु नाच करता है एक मेरी दर्शन तरुणी दे सारे रहने वाले बड़े हैरान राय उदास की हो हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक रूपता चलता है राय उदार चला हो गए हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक रूपता चलता है राय उदार चला हो गए राय उदार पढ़ता है तो कहता प्यारे हो गुरु नानक का प्यार जो मैंने मिलिया हो नहीं एक तो अंत का प्यार है अदम का प्यार है पता नहीं कि जन्मों का प्यार है। तो राय उदार रो के उन्होंने कह

सारी धर्म तुम्हारी भाई पक्षी तुम्हारी रात है, देवा वाली रात है, और मेरी सास प्यार नाथ सारी धर्म का राज है।

तो सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने कहा धन गुरु नानक चंदे साधुओं ने प्रसाद छका के हजू वापस मुड़े तलवंडी के नेड़े आए कह लगे बाले बालिया असि तो इतने बहवे तू घर चला जा। बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं हूं इतने लुप के बहना चाहते सात बच्चे बाला अपने घर आ गए कालू उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गए अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया मैं कल भाई बाले के घर चला बाले जी बैठा नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोले तीजी वेरी औली जी गया उथे वणा दिया चंगिया में लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के लिया भी ने तीह के पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लियाने सनों तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने मूड़ी और किस तरह सारी विद्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बल तेरा लाल हो गया किथे है नानक अज मैं नानक नू जीवदा नहीं छा मेरा घर उजाड़ जा रहा है नेता काजू क्रोध पिंडाल माता तृप्ता पता लग गया अज बड़ा गुस्सा आया होया है पता नहीं मेरे लाल लाल की करन मेरे बुलाया नहीं नाल की ही अम्मी जा तू जाके पिता नु समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबे 100 रुपये मां ने सोचा नौजवान धी घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर नु भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर कर ले कल पहुंच अगे हजूर समाधि लगा के बैठे हैं पता नहीं किहड़े प्रोग्राम पे सोचते जगत जनते नु ठंड पाउण वास्ते पता नहीं दादा किहड़े विचारां च बैठे जा भी पैसे कालू ने हजूर की मां को पकड़ के खड़ा कर लिया तो गुस्से में लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर भी कल संगत दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दिखी कर गुस्सा चंडाल में इस चंडाल गुस्से ने किया प्यारी सात संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेर ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उते चपेट बैठे सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेट बजी गुलाब दियां पंखड़ियां कुमलान लग गईयां नीर पै गए देते पंखी बेबे ने सोचा चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो तेरे अगे होके तकिया की तकिया नरंकारी वीर ने सोने मुखड़े से नील पे उपा मार के रोके कह लगी पिताजी मेरे वीर नु नाम है कभी वीर नु नाम है बेबे की कहती है

प्यार सहयोगा धीरे अज कल पश्चाताप रोए अपनी गलती तसवर करके रो रहा है। राय जी सड़ ओ हसे जिना अखां नाल नानक नूं चपेड़ा मारदा रहा। मैं तो माया का कीड़ा हां, मेरी अदाल सुन के नहीं आएगा। तुसी कहो राय जी फिर तुफान निकलती अखां दीआं छिप्पियां विच्चों प्यार ते सुच्चे मोती जुड़न लग गए। फिर कहिंदा की

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चल चलो मार्ग गोविंद मिले पार।

भक्ति सके विश्वास पैदा करिए। आनंद समय जी ने बहुत पक्षी है, एकाग्रता बहुत बखी है, उस एकाग्रता का दान दासियां के अंदर पाओ ताकि आप गुरु साहब की बाणी के नाल गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी बैठ के उस निजी जोत का आनंद मान सकिए। फतेह बुलाओ जी प्यार नाल सारे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पुरख रहा तू तू संसार कबीरी सुनाई बिना टेक तीर रहो ना भाई खत खंड में हंडन खलदल खंडन यात्रा मंडन बल मंडन कुछ डांडे खंडन तेज चंडन जो धनंडन पार करना सुखे सौता करना दुर्मत करना तेल के सहारना

हूँ तुझसे तुम्हारा मोरिया ब्याह पर नारी दे लेर न जावे मोरिया ब्याह एक नारी सदा जटी है मोरिया ब्याह पर नारी की पैन बिठाने दे पुराइया चंगिया मोरिया ब्याह दे पुराइया चंगिया माना पिया भैन जाने मोरिया

क्या सुख जब थे हम तनवत मिल गए हमारे पूछे पर तो है प्राण जब लगता थारे मोरे आ गया।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही

अच्छा फरमान जी, आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

अग में गोचरा तेरा अंत न पाया, अग में गोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया कि नहीं तेरा अपना

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तामी चंगा ही है रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए अपना बोले आप सुने।